0: लड़का अभी से तक कर दो बिल्कुल अपन लड़का का मिलना कर दो नमस्कार
1: मेरी बोलो नहीं वो कभी बोलो नहीं सारा गरीब बंदो तुम जा बोलो तुम जा बोलो आज तुम जा बोलो आज तुम जा बोलो